0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: सुनिए, इन्हें जानते हैं फादर पीटर दयाल।
1: वो रहे सामने।
2: माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आरव, हमारे इस कन्फेशन वीडियो के हेल्प से कैन इजीली पुट अ स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। विल बी अ फ्री मैन सून आरव।
3: सेंड इट मी राइट अवे।
0: जी।
5: The entire village will bear witness to this.
6: Arav, send it up.

0: आई जस्ट डोंट गेट यू आरव. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो.
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा. मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत में कर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती. हमें मिलना है, तुम देखना एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे.
0: I don't get you, man.
1: अपूर्वा, गाड़ी रोक.
0: क्या हुआ?
1: स्टॉप द कार प्लीज.
0: What happened?
1: खुशबू,

अलिसा, तिमीलाई थाहा छ नि है म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर। यो कुरा चाहिँ गोप्य राख है।